पवन हारे। गावन तुदनो पवन पाणी बै संत्र गावै राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुपत लेख जानन लेख लेख धर्म विचारे। गावन

बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे।

कर जिन सी माया जिन उपाई, कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई कर सी, फिर हुक्म न करना जाई। सो पात साहौ साहा पत साहेबो, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै

कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण ना जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब

अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावा

जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ ध्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी।

जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जु कर हो रक्षा राख ले हो मोहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

अकार जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही।

अवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे।

संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया।

इतनी सेवा प्रवान करनी जी बुला चुका दी खिमा आम सत्कार पैसा पासो अपना वाहिगुरु गुरु मंत्र है जप हमें खोई दे जाप शरण करिए जी कलाओ फतेह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी धन गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, aap bahut hi paagan wale ho jo ki संगति रूप विच जुड़ रहे सी तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी आनंद साहब विच कृपा करते हैं। महाराज कहते हैं कि करमी सहज ना उपजे, बिन सहजे सहसा नह जाए। महाराज कहते हैं कि तू दुनियावी कर्म जे करेगा, दुनियावी कर्म करन दे नाल तेरे मन विच सहज जा शांत जा आनंद नहीं आ सकता। महाराज कहते हैं जे थोड़ा भी आनंद आवेगा पर वह होगा थोड़े चिर लई, जिहड़ा कि है टैंपरेरी। हाँ, महाराज कहते हैं कि आपां किरत करनी है, कर्म करने हैं दुनियावी, पर जे आपां यह समझ लईए कि दुनियावी कर्म किरत करने नाल साडा सुख का साधन हैं, तो महाराज कहते हैं फिर आपां भरम विच हाँ। फिर महाराज अगे की कहते हैं कि नह जाए सहसा किते संजम, रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। महाराज कहते हैं कि तू जिन्ने मर्जी दुनियावी कर्म कर, पर तेरे मन विच जिहड़ी सहसा तेरी चिंता है, जिहड़े फिक्र हैं, वह बदने हैं, दूर नहीं होने। महाराज कहते हैं कि सहसे जियो मलीन है, जिहड़ा सहसा जिहड़ी चिंता है, फिक्र है, काम क्रोध लोह मोह अहंकार निंदिया चुगली, ये साडे मन की मैल हैं। महाराज कहते हैं साडे मन नू मैला करते हैं। सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। महाराज कहते हैं कि तू इस नू किस तरह धो सकता है। महाराज जपजी साहब जी भी कृपा करते हैं, कहते हैं कि भरिए मत पापा के संग, वह धोपे नावे के रंग। इत्थे महाराज कहते हैं कि मन धोवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए। जिहड़ा गुरमंत्र है, गुर शब्द है, तू इस दे द्वारा अपने मन नू धोवो। किस तरह? बार बार सिमरन करके। जो जो बार बार नाम जपेगा तेरे मन की मैल लथेगी। महाराज जी सुखमनी साहब विच भी स्पष्ट करते हैं, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। जदों तेरा मन हौली हौली, महाराज जी कहते हैं ये चिंता फिक्र काम क्रोध ये सारे दूतों तो ये फुरनिया तो जदों ऐन निर्मल हो जाएगा, फिर की होगा? फिर जरा नाम है तेरे मन विच वस जाएगा, तो उदों ही सानू जरा नाम वसन के नाल साडा जिहड़ा आनंद है, जिहड़ा कि दुनियावी आनंद नहीं पर जिहड़ा सहज आनंद है, जिहड़ा कि परम आनंद है, वह साडे मन विच उदों ही आवेगा जदों आपां मन नूं धो के आपां नाम नूं मन विच वसावांगे। इसलिए महाराज कहिंदे हन कि तू नाम जप संगत विच आके, क्योंकि अपना दुनियावी मकसद भी यही है कि आप रोज रहरा साहब पढ़ते हाँ, भई प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। आप रोज पढ़ते हाँ पर आप कोशिश करनी आप इस ते अमल भी करिए, आप संगत विच आ के कठे बह के नाम जपिए, घरे परिवार दे विच बह के नाम जपिए, फिर महाराज जी कृपा करनगे इस तरह ही अपने मन विच शांति ते सुख आवेगा।

सगल समग्री तुम रह सूतर तुमते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदासे होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरा श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस जिठे शब्द जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन द्यावे ताए सब थाई हुए सा दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान रखे बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई ते गवाई देख के अंडिट कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़िया के चढ़े आ रहे नचराए गुरुद्वार की सेवा ने कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी केसा स्वसन सिंह नभाई तिना की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वार का ध्यान रखे बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चिताव चितावन का सदका सर्ब सुखो जां जां खालसा जी। साहब तहत हर शरिया जिगते फतेह बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहब जी साए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनां चौंकियां झंडे मुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत का रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शे नमाणे के मान नताणे के तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जी के चरणां च अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि के दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना में आरती शब्द कीर्तन नाम सिमरन अभ्यास उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन है महाराज जीओ। समुचे सेवा निभाद्या बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या नाम जी जाप करद्या होइयां बेअंत फुलां बख्श देनियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उदम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईयां संगतां दे हिरदयां ते वसाउणा आईया संगतां दी हारी दर प्रवान करनी सभना दियां तिल फुर पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं धर्म करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी बिन संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदियां आप जी का धन्यवाद करदियां बेंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादार सिंघां वास्ते आनंद भेटा कीती महाराज जी सारी संगति हारी दर प्रवान करनी सभना दी माया सफली करनी कृत कमाईयां बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावना मस पूर्ण करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी आप जी दर घर दे सेवक भाई जस प्रीत सिंह सैणी समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती अते चढ़दी कला की अरदास बेनती करदियां गुरु घर वास्ते $1,000 माया भेटा कर देन कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करनी समूह सैणी परिवार के सिर ते मेहर प्रयत रखना चढ़दी कला बख्शिश करनी परिवार को देह रूपता तंदुरुस्तियां प्रदान करनियां जीओ दर घर दे सेवक स्वर्ग वासी सुनीति छाबड़ा की बरसी ते उन्हां दी आत्मक शांति वास्ते परिवार वालों $501 माया भेटा कर देने कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करनी विछड़ी आत्मा आत्मक शांति बख्शिश करनी घर विच परिवार विच चढ़दी कला बख्शिश करनी अंग संग होकर सहायता करनी
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ।

खोज शब्द में राज करेगा कल साया की रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वह गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार उतारण खंडा

साहिब जीओ। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटावो सिमरो जास विसंभर एकै नाम जपत अगणत अनेकै वेद प्राण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एकै दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै प्रभ के सिमरन दुख जम नसै प्रभ के सिमरन काल पर हरै प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ के सिमरन अंधन जागै प्रभ के सिमरन भौ न व्यापै प्रभ के सिमरन दुख न संतापै प्रभ के सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक तां कै लागो पाए प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूरन आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माहे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से धनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभ को सिमरह से परोपकारी प्रभ को सिमरह है तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरह बसै हरनेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच कहो चहो कुंट जाते हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मह आप निरंकार कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय मां भयान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंध न परे हर का नाम जपत निस्तय अनक माया रंग दिख न बुझावे हर का नाम जपत आगावे जे मार्ग एह जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याइये नानक गुरमुख परम गत पाइये छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिघन जय आए संघार हर का नाम तत्काल उधार है अनक जोन जन्म मरजाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मल कबोह न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै
ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जह मार के गने चाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जह पेंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा कोना सि जानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महा प्यान तप्त बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जहां त्रिखा मन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना क्या मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उतरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन के हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नोदान, मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन के बिरत विवेक। हर का नाम जन को मुक्त जुक्त, हर के नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन्न समाद नाम रसमाते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के तेतरे। पार जात एह हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है। नाम तुल कछ अवर न होए।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मध्ये फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना पुन्न दान हो मैं बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करै बहुपाती, नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव महा उदास तभी सर थीव अग्न माहे होमत प्राण कनक असव है वर भूम दान, न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे तो पी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देह छुट्टे गर्भ गुमान ना मनते हुट्टे, सोच करे दिनस अर रात मन की मैल न तंते जात, इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहू न बिख्या टरे, जल धोवे बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै अनक जतन कर तृष्ण न त्रापै, भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट पाप दुर्घय नहीं सिज्झै, छूटस नाहीं ऊब प्याल मोह व्यापह माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिंतल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुपाए, चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै, जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए होमै छोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की शरणे परै, जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबते ऊंचा, जा का मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन्न नहीं लेपा, निर्धन को धन तेरो नाव निथावे को नाव तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव दान, करण करावण हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते, तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए, सगल सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मिल हिरिया, सगल उदम है उदम भला हर का नाम जपहु जी सदा, सगल वाणी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जह घट वसै हर नाम सलोक, निर्गुण यार एयान्या सो प्रभ सदा समाल, जिनकिया तिस चीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिंतु साज स्वार सिंगारिया गर्भ अगन मह जिनह उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूध, बिरद प्याओ ऊपर साक सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन, एह निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श ले हो तो नानक सीजै, जह प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै, जय प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुल्ला, जय प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस पाम करण नित्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काढ लेहु प्रभ आपे, आद अंत जो राखण हार तिस स्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नव निध पावै तासे मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दरगहमान तिसे बसारे मुग्ध अजान, सदा सदा ए भूलन हार नानक राखण हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै, चंदन ले पुतारै तोए गर तब प्रीत पसम संग होए, अंध कूप में पतत विकराल नानक काढ लेहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात लोक बचा रह करै दिन रात,
बाहर भेख अंतरमल माया छपस नहे कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरह अथाह जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लिहो ओढ़न बहावै कहां बुझारत बुझै डोरा निस्कैये तो समझै भोरा कहां बिसन पद गावै गोंग जतन करै तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सो आवे न चीत जो बै राई तासो प्रीत बलुआ कै ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन है मन है प्रतीत काल न आवे बूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मह सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सुआज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोट कै लाग है आन सुवाए नानक कहू न सिजई बिन ना वै पत जाए इष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस कारण बिखोट गवावे एक पी ना दे दस पी हिरले तो मूड़ा को कहां करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत शाह अपनी दे रास खात पीत बरत आनंद उलास अपनी अमान कछ बहर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त तिस आगे राखे प्रभ की आज्ञा मान माथे उसते चौगण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भात माया के हित सर पर होवत जान अनित बिरख की छाया सो रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे जो दिस है सोचा लनहार लपट रिहो तह अंध अंधार बटाऊ सूजो लावे नेह ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया मिथ्या हौ मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हसी अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या द्रोह मो अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुनह मिथ्या हस पर दर को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत परत्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बुझे मिथ्या सब पए सफल देह नानक हर हर नाम ले वृथि साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा वृथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरण दिन रैन वृथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ दाम धन धन तेजन जह घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु पर बीन बाहर भेख न काहू भीन अवर उपदेश है आप न करे आपत जावत जन्मै मरे जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आप पहमाने आप है आप आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्याण पसगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस ले लड़लाए थान थनंतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाय अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी
जय प्रसाद छती अमृत खाहे, तिष्ठा कुर को रख मन माहे, जय प्रसाद सुगंध अंतल।

सब को मान मुखता को जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पाव है नानक पत सेती कर जावे जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावह तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जय प्रसाद तुझ गो न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आ भूखण पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद अश्वहस अस्वारी मन तिस प्रभ कौ कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिल्ख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई। तिसे त्याई जो एक अलख है इहा उहा ता नानक तेरी रख है। जय प्रसाद करै पन्न बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै। जय प्रसाद सुनह करण नाद जय प्रसाद पेखै बिस्माद जय प्रसाद बोलह अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जे बसना जय प्रसाद हस कर चलह जय प्रसाद संपूर्ण फलह। जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल अमनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू तांस्यो राज। जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आप हो कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इन कै कछु ना हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्च कथा। अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटै अभिमान साध के संग प्रगटै सुज्ञान साध के संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सबकी रीन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतहू तावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत। साध संग के स्यों नहीं बैर साध के संग ना बीगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग ना कबहू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह साध के संग बसे थान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु क्या कुर्बान। साध के संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है साधु के संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शुभ असुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कशकाल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुखत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के

0: ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਤੀ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਾਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਨੇ ਤੇ ਤਬ ਖਿਆਨੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੇ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਔਰ ਨ ਪੇਖਿਆ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਪ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੌ ਲਾਗੈ ਤੁਲਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਇਹ ਗੁਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮਹਿਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕੱਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸੰਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਏਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜਭਾਕੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਦੇਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥੈ ਨ ਜਾਇ ਅਧਿਆਖਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਸਲੋਕ। ਉਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਭੇਖੈ ਭਗਵਾਨ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਾਤਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਭੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਠਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, करण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद भिख्या पर हरे, मन की बास न मनती टरे। इंद्री जित पंच दोखते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। बैस न सोजस सुपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुए नेह कर्म, तिस बैसनु का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बांछे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवह नाम जपावे, नानक ओ बैसनु परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। मन ते बिनसे सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म है शुद्ध है। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नया वे। वेद पुराण सिमरत बुझे मूल, सुकम है जाने असूल। चहो वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्प को ज्ञान, चहो वर्णा में जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए। कर कृपा अंतर और तारे, पस प्रीत मुग्ध पाथर को तारे। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितने पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिख्या तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूजी परे। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सोग कहावे। तैसा हर्ख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ। आपे करण करावण जोग, प्रभ भावे सोई फन होग। पसरो आप हो अनंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक उस्तत करह अनेक जन, अंत न पारा वार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी। कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब काव विचार है। कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते कांत न पावे। कई कोट पे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट पर दुख न करे। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे। जित जित लाभ हो तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बृख नपजाए। कई कोट पौन पानी भैसंतर, कई कोट देश भू मंडल। कई कोट सस्य सून क्षेत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत तारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास। कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट की ये चर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुरन थीवे। कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। सब ते नेर सब हो ते दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। कई कोट जन्म है जीव है मरह, कई कोट बहु जोनी फिरह। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे। ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ, ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਏਕੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਹੇ ਬੀਤੇ, ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਏ ਸਤ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਕੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲ ਹਾਰਣੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਖਿਨਮੈ ਥਾਪੂ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨਕ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਲਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਘੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਤਾਕਾ ਲਿਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ, ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬੂ ਊ ਵਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਬੂ ਨਿਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬੂ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤਰਵਾਲ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ, ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ, ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹਿ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮੈ ਪਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋ ਤਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਗੁਰਬਾਨ, ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहुजोन प्रमावे, धन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे। नानक इहां मुक्त आग्या सुख पावे, तनवंता होए कर गरबावे, तृण समान कछ संग न जावे। बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए बिनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसवंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटा बिमान, सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार। अनक जतन करा तुम नहीं द्रवै, हर दरगह को कैसे गवै, आपस को जो पला कहावै, तिसे भलाई निक न आवै। सर्व की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाना मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए। जब यह जानै मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे कौ बैरी मीत, तब लग ने चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानको छूटे। सहस कटे लख कोट तावे, तृप्न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग भिख्या के करै, नह तृपतावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बटभागी किसै प्राप्त होए। करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करणे हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किच कीन सो अपने रंग, सब ते दूर सबहु के संग। बुझे देखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक, मरे न बिनसै आवे न जाए, नानक सद ही रिहा समाए। आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब के साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करणे हार। उस ते पिन कहो किछ होए, थान थनंतर एकै सोए, अपने चलत आप करणे हार, कौतक करै रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मधे किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरण बख्याणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक। संत शरण जो जन परै, सो जन उतरण हार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी। संत के दुख नारजा कटै, संत के दुखन जमते नहीं छुटै, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक मह पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभाते हीन, संत के हते को रखे न कोई, संत के दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतरे। संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन तृग्द जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता ओई भीगत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाए, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज देहीन, संत का निंदक दुखी आर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख। संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए। संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कित काज न पहुंचै, संत के दुखी को उद्यान प्रमाइय, संत का दुखी उजड़ पाइय, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सांस बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाही, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावै तां लए उबार, संत का दुखी यूं बिललाए, जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव ईंधन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुट्टे अकेला, ज्यो बुआड़ तिलखेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सनमिथिया कहत, किरत निंद का तुर ही पया, नानक जो तस पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा नयासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख ना तृष्टा कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास, सब कछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड भागी नानक जन से, सलोक तजो सियाणप सुरजन हो, सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए, अष्टपदी मान को की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक कै भगवान, जिसके दिए रहे गाए, बहुर न तृष्णा लग गया, मारे राखे एक आप, मानक कह किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सद व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटह पाप जपिया हर बिंद, कर हर कर्म सरण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से धनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, इत उत के सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्हें निरंजन जान्या, गुर प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोई निर्वाण एक ऊपर, जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सिज्या, गुर प्रसाद तत सब बुझ्या, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल, नह किछ जन्मे नह किछ मरे, आपन चलत आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रच थाप उथाप, अवनासी नाही किछ खंड, धारण धार रिओ ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए तनानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उद्धरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल ले कृपाल, गुर का शब्द जप पए निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनो कृपा करै बड़भागै, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किछ करे सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुपाए होवे सो होए, करणे हार पछाणे सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा साते सा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निदान उन्हू बने आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जाने को जान, सलोक ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਕਾਨਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘੱਟ ਸੋ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕਉ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਣ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹੋ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਬਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਲ ਚੜ ਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਿਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋਲ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਖੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹ ਦਰਿਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰ ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਉਹ ਕਰਣੈ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾਕਿਆ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਨੀਏ ਤਹਿਲੋਏ ਜਾਕਿਆ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ ਸਚ ਕਰਣੀ ਸਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈ ਰਾਖ ਮਾਨਕ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੈ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹਿਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਨਰਾਓ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਣਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਣ ਭਰਣ ਜਾਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਏ ਘਰ ਤਾਕੈ ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਿਸ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੇ ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਭੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵੈ ਸੇ ਤਿਹ ਗੁਣ ਮੇ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰਿਆ ਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ नाना रूप नाना जाकी रंग नाना भेख करै एक रंग नाना बिद किनो विस्तार प्रभव नासी एक अहंकार नाना चलत करेखिन माहे पूर रहियो पूरन सब ठाए नाना विदकर भरत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हरनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे प्रिय सब पवन नाम के संग उतरे सुन सरुण कर कृपा जिस अपने नाम लाई नानक चौथे पद में सोजन गत पाई रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी वाणी सत पुरख सब माहिस्माणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाकै हृदय प्रवेश सत नृत बुझै जे कोए नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मितगत जिसकी सृष्ट सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस पावे सो वतिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बुझ्या तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राच जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे उदा ते दुख काटन हार जाके संग तरह संसार जन का सेवक सोवट भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सब तारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मान्या करण करावण तिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरभउ होए बसाना जिसते उपजिया तिस माहे समाना बस माहेले बस गडाई ताको भिन्न न कहना जाई बुझै बुझण हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालनहारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राखै ताकि गत मित कोए न लाखै प्रभ के सेवक कौ को न पहुँचै प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी महकल राखै पसम करै लश्कर कोट लाखै जिसका सासना काढ़त आप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन करत वो पात तिसके कर्तव बिरथे जात मारे न राखै और न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करह रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडानी बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत एह मन तन तृपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाही दृष्टाया। नाम धन नाम रूप रंग, नाम सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृपताने, मन तन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करह भगत आत्म कै चाई, प्रभ अपने सो रह है समाये, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जानो, आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन देह, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे है। अवर स्याणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सत पुरख जिन जानिया, सत गुर तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उद्धरे, नानक हर गुण गाउ अष्टपदी। सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उच्चरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सवार, नानक सतगुर सिख कौ जी ना समारे, गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कच्छ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए नेह कामी, तिसको होत परापत स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाउ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ परम, सहस स्याणप लया न जाइये, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतिया ने, पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट देखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेहबा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूरन विवेक, काहू बोल ना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया के संग न लेप, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तह तेना से, तपत महे ठांड वरताई, आनंद प्या दुख ना ठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौचू का निर्भो होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस सरण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पये प्रगास साध के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमावना नानक इह धन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक स्मर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसारो चरण कमल हृद में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवथ एहो धन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्ब रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंट उठ तावे सो धन हर सेवा ते पावे जिस सुख कौ नित बाछ है मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की शरणी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कहनाए दह दिस तावत आवैठाए ताको विघ्न ना लागै कोए जा कै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अबनासी कहो नानक काटी जम फासी तत् विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमरण प्राण आधार अनक उपावना छूटन हारे सिमृत सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंछत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अरबनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी
1: जिंदी है जिसको जना बिकाना नाम विस्तार नानक प्रस्ताना गुर की मतू ले आने भक्त बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किलिप जाहे आप जपो औरा नाम जपावो सुनत कह तिरहत गत पावो सार भूत सत हर को नाव सहज सुभाय नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिनिस जाए हो मैं बिक फैल होए अचिंत बसै सुख नाल सात ग्रात हर नाम समाल छाड़ छ्याण सगली मना साधु संपावे छत दना हर कुंजी संच करो त्योहार इत पुत्र के जयकार सर्व निरंतर एको देख को नानक जाका मस्तक लेख एको जप एको सारा हे एक सिमर एको मनिया हे एकत के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर हो पूरन पूर हो प्रव्याप अनिक विस्तार एक ते भय एक रात पराजित गए मंथन यंत्र एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया प्रिया तो चरणाई नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई अश्परी जाच गुजन जाचा प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार्व मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास सास प्रभु तुम्हें त्यामु चरण कमल सो लाग प्रीत भगत करो प्रभु के निंद नीत एक कोटे को आधार नानक मांग नाम प्रभु सारु प्रभु के दृष्ट महासुख होवे हर रट पावे बिल्ला कोई जिन चाखिया च जिन त्रिकाने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुबर प्रे प्रेम रस रंग उपजित जाओ साध के संग परे चरण आन सब्तियाग अंतर प्रकाशन दिन लिवलाग बड़ भागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक के मनसा पूरी भई सतगुर से निर्मल मतलई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहार बंधन काट जब मुगत जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इज पुण्य सरदा सब पूरी रो रहा सदसंग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाई नान भक्ति नाम समाय सौ क्यों विसरा जी काल ना पान सौ क्यों विसरा जी की आ जान सौ क्यों विसरा जिन सबकी जिया सौ क्यों विसरा जी जीवन जिया सौ क्यों विसरा जी अग्न में राख गुरु प्रसाद को बिल्ला लाख सौ क्यों विसरा जे भगते कांड जन्म जन्म का टूटा कांड गुरु पूरा तत ए बुझाया प्रभ अपना नाम जमते आया साजन संत करो एव काम आंत याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए त्रिग्य संसार बिन भक्ति तन होसी छार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का हो मतनाश नानक नाम जपो मुंतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंत्र अंतर ए सुवाओ नेत्रोपेख द्रस सुख होए मन विक्षा साध चरम धोए भक्त जना का मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बास्त दीजे कर मया गुरु प्रसाद नाम जप रहा ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभ बक्षम दीन दयाल भक्त वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा कर्त प्रतपाल आद पुरुख कारण कर्तार भक्त जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होई पुनीत भगत भाई लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीचे जान नानक तुमरी सारन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुकत मोक पाई एक नमक हर के गुण गाय अनिक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का प्रसंगीत रचना जपती हर हर नीत भली शोक नीचो बात नमंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साधु संग प्रभु देव निवास सर्व सुख नानक परगास सरो सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अर्पी जब आकार युग चना दिखेता पाप तब कहते होता जब तारी आपन सुन समार तब पैर क्रोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चीर ना जापत तब हरक सोग कोंक से व्यापत जब यापनिया बाप पार ब्रह्म तब मोह कहा कि होवत ब्रह्म आपन के आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल जनी तब बंद मुकत को किसको गनी जब ही कह हर अगम या पार तब नरक सुर्ग को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब से सुगत कहू कि ठाए जब आप है आप अपनी जोत धराए तब कवन डर कवन कत डराए आप अंतरित आप करण हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी चुका पन आसन तह जन्म मरण को कहां विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम के त्रास कहो किचु होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुपत जित पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर गाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाते आपन या पापी अचर जा नानक आपन रूपा पिहु पर जाओ। जय निर्मल पुरख प्रगपत होता तह बिन मैल कहो क्या धोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अपमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै चल चित लगत को कीश। जय ज्योत स्वरूपी जो संचमावे तै किसै भूख कौन तृप्तावे। करण करावन करण हार नान करते का नाई सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र छुत भाई। जय सर्व कलाप है परवीन तह वेद कतेब कहाँ पूछीन। जब आपन आप आपुरतार है तो सकन अपन कहाँ विचार है। जे आपन ऊंचे आपन आपने रा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। विषमन विषम रहे विषमाद नानक अपनी गत जान हूँ वाप। जे अचल अछेद अभेद समाया वहाँ किसे व्याप्त माया। आप है आपस को आप है आदेश तय गुण का नाही प्रवेश। जय एका एक एक भगवंता ता कौन अचिंत की सलाह कह चिंता। जे आपन आप आपत्यारा तय कौन कतह कौन तुमने हारा। गो व्यंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा। जे आप रचियो प्रपंचकार तह गुण मैं कीनो विस्तार। पाप तुम तय भई कहावत को नरक को सुर्ग बंचावत। आल जाल माया जंजाल ओ मैं मोह प्रंभ भार। दुख सुख मन अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान। आपन खेल आप कर दिख खेल संकोच तू नानक कह। जय अवगत भगत आप जय पत्र पासार संत प्रताप। दोहू पाक का अपनगी उनकी शोभा उन्हों बनी। आप है कोतकर अनन चोज आप है रस भोग निर्जोग। जो जिस पावे तिथि आपन नाही लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेस मान अथाह अगणति अतुल जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। सलो जी जंत के ठाकुरा आपे बर्तन हार। नानकी को पसरिया दूजा कह दृष्टार। अश्वरी आप कते आप सुन हार आप है एका विसार। या चित पावे ता चिटू पाई आपने पाने लई समाई। तुम ते बिन नहीं किच होए आपन सूत सब जगत परोय। या को प्रभु जो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो सुंदर ते तत्का पिता नानक टगल सिटका जेता। जी जंत्र सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ गुनाथ। जिस राख है तिस कोई ना मारे तो मुआ जिस मनोह विसार है। तिस तजी अवर कहाँ को जाए सब श्री एक निरंजन राय। जी की जुगत जाकर सब हाथ अंत

अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपाल जियन भूभात, जो जो रचियो सोच से दियात, जिस भावै तिसले मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक के जानिया, करनहार नानक के जानिया, जन लागा हर एक नाई, जिसकी याचना बिरती जाए, सेवक को सेवा बन जाए, हुकम बूझ परमपट पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाकर मन बचा निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैर, अंदिन पूजें गुर के पैर, ए लोक सुखिए पर लोक सुभेले, नानक हर प्रभु आपै मेले, साधु संग मिल करो आनंद, गुण गावहु प्रभु परमानंद, राम नाम जत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार, अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का ये सुआओ, आठ पहर प्रभु पे खो नेरा, मिटे अज्ञान विंचे अंधेरा, सुन उपदेश देव सावो, मन इच्छे नान फल पावो, हालत पलत देव ले सवार, हालत पलत दोय ले सवार, राम नाम अंतर उतार, पूरे गुर के पोरे दिखिया, जिस मन बसै चित साच परिखिया, मन तन नाम जपो लिवलाई, दुख दर्द मन ते बोझाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगा निभा के तुम्हारी, एका टेकर

विसारू। संत जना का पेखंत ब्रह्म, संत जना का हृदय सब ब्रह्म। संत जना सुने तुबचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन। जिन जाता चिये रहत, सत वचन तारू सब कहत। जो जो होए सोई सुकुमान, करण करावन हार प्रभजान। अंतर बसे बाहर में ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत या सब सत, तिस प्रभ ते सगली ओतपत। तिस भावे ता करे विस्थार, तिस भावे ता एकंकार। अनक कला लकी न जाए, जिस भावे तितले मिलाए। कावन निकट कौन कहिया दूर, आप भरपूर। अंतरगत जिसे आप जनाए, नान तीजन आप बुझाए। सारब भूत आप वरतारा, सारब नैन आप पेकन हारा। सागर सामग्री जा का तना, आपन जसा पी सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सबका मधु अलिप तोरा है, जो किच कहना तू आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इष्ट हो तो नाही बुरा, पूरा कहो किने कज करा। आप भला करतु तत्न की, आपे जान अपने जी की। आप साच तारी सब साच, औत कोत आपन संग्राच। ताकि गतमित कही ना जाए, दूसर होय ता तो जी पाए। किसका किया तब परवान, गुर प्रसाद नानक उजान। जो जान है तिस सदा सुख होए, आप मिलाए ले प्रभु सोए। ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद

मुकत करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आप मुकत करै संसार नानक तिस

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अश्वरी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरा चिंद आसनित त्याग गोतरंग संत जना की तूर मर्मंग आप छोड़ बिनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पल्ले पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार के कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के वचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत हो तू तार आप त्रै लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हरे रंग जय जय सबल अनाहत वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माते नानक उतरे तिनके साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भई सबरेन अमृत नाम साध संगलैन सो प्रतन भई गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुनरचना कहते कर प्रसार दया प्रभुतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु के उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुख मन सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बस सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूरन होए प्रदान पुरख प्रगट तबलोए सबते ऊंच पाए अस्थान बहुर ना होवै पावन जान हर तन खाट चल जन सोए नानक जिस प्राप्त होए खेम शांत रिद नाउ निद बुद्ध ज्ञान सर्प तै सिद्ध विद्या तप योग परम ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबका मद सगल ते उदास सुंदर चतुर सतका बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जान का मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जप मन कोए सब जुग में ताकि गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र भेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत का मन विश्राम कोट अपराध साधु चमिट संत कृपाते जमते छुट जाका मातक कर्म प्रभु पाए साधु शरण नानक ते आए जिस मन बस सुन लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभु चीत जन्म मरण ताका दुख निवार दुर्लभ दे तत्काल उतार निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम

गावे को साज प्रीतन के, गावे को जी लै फिरदे, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखे हाथ राह दूर, कथना कथी ना आवे तूट, कथ कथ कथी कोटि कोटि कोट कोट, निंदा दे लैंदी टपाही, युगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मे हुक्म चलाई राहु, नानक विसै दी प्रवाह, साचा साहिब साच राहु, पाखिया पाउ अपार, अख है मंग है देह दे, दात ब्रेदा तार, फेर के अगै रखी है, जित जित दिसै दरबार, माहो के बोलन बोली है, जित सुंदरे प्यार, अमृत वेला सच नाहु, बडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नानके वे जानिया, सबा पे सचियार, थापिया ना जाए, कीता ना होई, आपे आप निरंजन सोई।

Gali, namarsın ya gönde, namarsın ya bende, namarsın udare, namarsın ya pare, namarsın su eka, namarsın ya neka, namarsın ya bute, namarsın ya dupe, namarsın nirkarme, namarsın nirbarme, namarsın nirdese, namarsın nirbese, namarsın nirname, namarsın nirkame, namarsın nirgate, namarsın nirgate, namarsın nirdute, namarsın ya bute, namarsın ya luke, namarsın ya suke, namarsın nirtape, namarsın ya tape, namarsın tirmane, namarsın nidane, namarsın ya gahe, namarsın ya bahe, namarsın tirbage, namarsın ya sarge, namarsın parbhuge, namarsın sujoge, namarsın ya range, namarsın ya bhange, namarsın ya gamme, namarsın sirame, namarsın jalasre, namarsın nirasre, namarsın ya jate, namarsın ya pate, namarsın ya majbe, namarsın ya jbe, adhesan ya adhese, namarsın ya bhese, namarsın nirdhame, namarsın nirbhame, namarsar bhikale, namarsar bhudiyale, namosar bhurupe, namosar bhupe, namosar bhukhape, namosar bhutape, namosar bhukale, namosar bhupare, namastha sudeva, namastham yabheva, namastham ajanume, namastham subhaname, namosar bhugone, namosar bhubone, namosar bhurange, namosar bhupange, namokale kale, namastha sudeyale, namastham yabharne, namastham yamarne, namastham jararang, namastham kirtarang, namosar bhutande, namosar sudeyabhande, namastham nirthake, namastham nirbhake, namastham rehime, namastham karime, namastham anamte, namastham mahante, namastham sirage, namastham suvage, namosar bhusokang, namosar bhupokang, namosar bhukarta, namosar bhuharta, namo jogya jogya, namo bhogya bhogya, namosar bhudyale, namosar bhupale, chatri chandito prasaru, arupuha anupuha aduha abuha, अलेख अपेख अनाम अकाम अदेह अबेह अभी अजीत अभीत त्रिमान निदान है त्रिवर्ग सर्ग अनिल अनाद अजेह अजाद अजनम अप्रण अभूत अप्रण अगंज अपंज अजुज अचंज अमीक रपिक अदंद अपंद निर्भुज असुज काल अजाल अल्लाह अजाह अनंत महंत अलिक नृतृक निर्लंब असंभ है अगम है अजम है अभूत है अचूत है अलोक है अशोक है अक्रम है ब्रह्म है अजीत है अबीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है प्रियेक है भुजंग प्रिया छंद।

अनुभूतांग अभावंग दत्मित अपार गुण गण उदार मुनगण प्रणाम निर्भय निकाम आतुदूत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य करम आदर क्षेत्र सर्वापन्नाढ्य अनन्नपाढ्य चात्री चिंतो प्रसार गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं नामे अकामे भजन प्रिया चंद चतुर्चक्रकर्ता चतुर्चक्रहर्ता चतुर्चक्रदाने चतुर्चक्रदाने चतुर्चक्रवर्ते चतुर्चक्रवर्ते चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रपाचे चतुर्चक्रवाचे चतुर्चक्रमान चतुर्चक्रदान चात्री चंद न शत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अदनम अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिष्ठा अधिष्ठा दृष्टा कृष्ण भगवती चंद तो प्रसाद कत दे के आछ जिजेश के आ बिजबेश के आगंज कर्म के आ भंज परम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजन प्रभा है के दर्पण दूजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतन कृतिया के चतन क्षत्रिय के प्रमन स्वरूप के अनुभव अनुप के आद अदेव है के आप वेव है के चित्र बेहना के एक अधीन के रोजी रजा कर रही मिया कर के पाक बेअब है के गबल गैब है के अपुल गुनाह है के साहंसा है के कारण कुनिंद है के रोजी दिहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कलिया के सर्वं दली है के सर्वत्र मान के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गोन के सर्वत्र बोन के सर्वत्र देश के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देश के सर्वत्र भेष के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेके के सर्वत्र पेके के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक के सर्वत्र पोक के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र भेष के सर्वत्र मान सदैव प्रदान के सर्वत्र जाप के सर्वत्र ताप के सर्वत्र बान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलीम के परमं पहीम के आकल अल्लाह में के साहिब कल्ला में के हुस्नल वजूह तमाम रजू है हमेशुल सल्लाह में सलीकत बुनाम है गनीमल शिगस्ता गरीबुल प्रस्ता है बिलंगदुल मकान है जमीन जमान है तमीजुल तमाम है रजुअल निदान है हरिफुल अजीम है रजा के यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमल की राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त पराज सदा सर्व साज है समस्त सल्ला में सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी आरामे त्रिभंगे त्रिकामी निर्पर्गं त्रिपादे अकंजे अकादे सुभंग सर्वपागे सुसर्वा अनुराग त्रिभुक्त स्वरूप है छिज है छूत है के नरक प्रणाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परजुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुक्त अनूप चात्री छंद अभंग है अनंग है अपेक है अलेख है अब्रह्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है अनाथ है उदास है दंद है अबंध है अभक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है निचिंत है तुनिंत है अलिख है अधिक है अलिख है अपेक है अड्डा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद तौ प्रसाद नमो नरक नाशे देवं परगाचे नानंगं स्वरूपे अनंगं स्वरूपे पर अभंगं विभूते परमात्म परमात्मे सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे तर्पंगे त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे तर्पंगे अनूपे न पुत्र है न पुत्र है न शत्र है न मित्र है न ताता है न माता है न जात है न पात है निर्साकं सरिकं तो अमीकः सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंद तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर
ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਤਲਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਤਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੇ ਦੀਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਸਤਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮਲ ਕਿ ਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੇ ਕੁਲ ਸਿਕਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਸੁਲ ਵਿਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਨ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਸਮਰਥ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੁੰਜਲ ਆਨੀਮ ਹੈ, ਅਗੁੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸਮਰਥੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਖਿਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਨ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਬੈਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮੁਲ ਤਬੀਨ ਹੈ, ਸਮਰਥੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ, ਪਾਰੰਗ ਪਰਮ ਈਸ਼ ਹੈ, ਸਮਰਥੁਲ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਅਭੇਕ ਹੈ, ਜਮੀਨ ਜਮਾ ਹੈ, ਅਮੀਕੁਲ ਈਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੇ ਦ੍ਰੁਤ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕੇ ਅਚਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕੇ ਅਮਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕੇ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੇ ਅਮਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਕੇ ਅਮਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕੇ ਅਚਰੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕੇ ਅਮਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਧੁਬਾਰ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਮੁਦਾਮ, ਹਰਬਰ ਅਗੰਜ, ਹਰਨਰ ਪ੍ਰਪੰਜ, ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੁਨਮਨ ਤਲਾਮ, ਹਰਨਰ ਅਖੰਡ, ਵਰਨਰ ਅਮੰਡ, ਅਨੁਭੋ ਅਨਾਸ, ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਲਤਲ ਮੁਦਾਮ, ਅੰਛਿਜ ਅੰਗ, ਆਸਨ ਅਪੰਗ, ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ, ਗਤਮੀ ਤੂਤਾਰ, ਜਲਤਲ ਅਮੰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੰਡ, ਜਲ ਤਲ ਮਹੰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ, ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ, ਦਿਨਤ ਦਰਦ ਦੁਰਾਸ, ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ਏਕ ਸਦਾਹੁ, ਓੰਕਾਰ ਆਜ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦੁ, ਕਲਖੰਡ ਖਿਆਲ, ਗੁਰਬਰਿਆ ਕਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਚਿਤ ਚਰਨਾਮ, ਅੰਸ਼ ਜਗਾਤ, ਆਜ ਜਨਾ ਬਾਤ, ਅੰਜਨ ਜਗਾਤ, ਅੰਜਨ ਅੰਦਰੰਜ ਬਾਤ, ਅਨਟੁੱਟ ਅਨਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ, ਅਨਟੁੱਟ ਅਪਾਰ, ਆਜੀਟ ਕ੍ਰਮ, ਅਜ ਕੀਟ ਕ੍ਰਮ, ਅਣਬਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ, ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾਚਨ ਦਿੱਤੋ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਰੁਣਾਲਾ ਹੈ, ਅਰਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਲਕੰਡਨ ਹੈ, ਮਨਮੰਡਨ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਹੈ, ਕਲਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਰਬੂਬਾਰਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਤ ਕੇਦਰਨ ਹੈ, ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ, ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਗਜਾਨਾ ਹੈ, ਸਰਬੰ ਪਰ ਹੈ, ਸਰਬੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਬਪਾਸ ਹੈ, ਸਰਬਨਾਸ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕਾ ਹੈ, ਸਵਰ ਹੈ, ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਗਦੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਕਲਕੰਡ ਹੈ, ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕਰੈ, ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ, ਅਤਪਾਥ ਪੈ, ਅਕਿਰਤਾ ਕਿਰਤਾ, ਅਮਿਰਤਾ ਅਮਿਰਤ ਹੈ, ਅਮਿਰਤਾ ਅਮਿਰਤ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਅਕਿਰਤਾ ਕਿਰਤਾ ਤਣੀ ਦੁਰਤ ਹੈ, ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਕਿਰਤਾ ਕਿਰਤਾ, ਅਮਿਰਤਾ ਅਮਿਰਤ ਹੈ, ਅਜਬਾ ਕਿਰਤਾ ਹੈ, ਅਮਿਰਤਾ ਅਮਿਰਤ ਹੈ, ਨਿਰਨਾਇਕ ਹੈ, ਕਲਕਾਇਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਹੈ, ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ, ਨਿਰਪਨਾਇਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਾਇਕ ਹੈ, ਭਾਉ ਭੰਜਨ ਹੈ, ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ, ਰਿਪਤਾਪਨ ਹੈ, ਜਪਜਾਪਨ ਹੈ, ਅਕਲੰਕ ਕਿਰਤਾ, ਸਰਬਾ ਕਿਰਤਾ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ, ਹਰਤਾ ਹਰੇ, ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ, ਤਰਬ ਆਤਮ ਹੈ, ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ, ਕਿ ਜਸ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ, ਬਜਨ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦ੍ਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗ ਤਾਮ ਸੰਗ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਪ੍ਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਚ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰੇ, ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਜੁਦ ਜੁਦੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ, ਨਮੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਨਮੋ ਕਲੇ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੇ, ਅਨਾਦੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ, ਨਮੋ ਆਸ ਆਸ, ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬੰਕੇ, ਅਬੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਆਰੰਗੇ ਆਰਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ, ਆਰੰਗੇ ਆਕਾਮੇ, ਏਕ ਤ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਅਜੈ ਅਲ ਅਭੈ ਅਭ ਅਭੂ ਅਜੂ, ਅਨਾਥ ਅਕਾਸ, ਅਗੰਜ ਅਪੰਜ, ਅਲਖ ਅਪਖ, ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ, ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ, ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ, ਅਗਾਹ ਅਡਾਹ, ਅਨਾਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤੇ, ਅਜੋਨੀਆ ਮੋਨੀ, ਨਾ ਰਾਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ, ਨਾ ਰੂਪੇ ਨਾ ਰੇਖੇ, ਅਕਰਮਨ ਅਬਰਮਨ, ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ, ਬਜਿੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ, ਨਮਰਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ, ਸਹਿਮਰਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ, ਅਗੁੰਜਨ ਆਨਾਮੇ, ਸਮਰਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ, ਨਿਰਕਾਮਨ ਵਿਭੂਤੇ, ਸਮਰਤੁਲ ਸਾਰੂਪੇ, ਕੁਕਰਮਨ ਪ੍ਰਣਾਸੇ, ਸੁਧਰਮਨ ਵਿਭੂਤੇ, ਸਦਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੇ, ਕਰੀਮਨ ਕੁਨਿੰਦਾ, ਸਮਰਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ, ਅਜਾਇਬ ਵਿਭੂਤੇ, ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ, ਹਾਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀਮੁਨ ਰਹੀਮੇ, ਚਤੁਰ ਚਕ੍ਰਵਰਤੀ, ਚਤੁਰ ਚਕ੍ਰਭੂਤੇ, ਸੁਯੰਗੋ ਸੁਭੰਗ, ਸਰਬਦਾ ਸਰਬਜੂਤੇ, ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ, ਦਯਾਲੰ ਸਾਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ, ਅਭੰਗਮ ਵਿਭੂਤੇ।

क्रिया और जियो सब ही जग श्रे भगवान को भेद ना पायो। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पास दसवीं कभी बात बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हो जित की इच्छा तब चरणन ममर।

घट घट के पट पट की जान है। जब उदकृक करा करतारा प्रजा तरस तम दे अपारा। जब आकृत करत हूँ काबू तुम मैं मिलत देहे तर सबू। जेते बदन सिर सब धार है आप आपने बोझ विचार है। तुम सभी के रहत निरालम जानत वेद तेज अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूल उचारत पेता।

कथियो अगत कहानी। हे मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू, सुन मन मेरिया। ए माया मोनी जिन एत ब्रह्म बुलाया, माया ता मोनी तिने कीती जिन चगोली पाईया। कुर्बान कीता तिसह मिटो जिन मोह मिटा लाया। कहे नानक मन चंचला

नीति आया, पवित्र होए गुरुमुख जिन नीति आया, पवित्र माता पिता कुटुंब सहित चो पवित्र संगत सबाई आ, कहंदे पवित्र सुनदे पवित्र से पवित्र जिन्हें मनु

देखो सिख गुरु से जन्म कु होवे होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय आए अंतर आत्मा समारे आप छड़ सदा रह प्रणय गुरु बिन अवरना जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख जन्म कु होई देखो गुरु ते बेमुख होवे बिन सतगुरु मुकत ना पावे पावे मुकत ना होता कोई पुछो विवेक क्या जाए अनेक

सब स्थिति मन मिलिया सच्चे लाया पाओ। आपे ही रारतने आपे जिसनों दे बुझाए, कह नानक सब दर्तन है हीरा जित जड़ाओ। शीर्षक आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख से बुझाए। तोड़े बंधन हो वह मुकत

सिमरत सातर उन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी गुरु बाजो, तत्ते सार न जानी तही गुणी संसार।

जैसी अग्न उद्रमा तैसी बार माया, माया अग्न सब एको जे ही करता खेल रचाया, जा तिरपाणा ता जमिया परवार पल्ला पाया, लेव छड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया, एह माया जित हर विसरै मोह उपजे पाव दूजा लाया, कहना गुरु प्रताप जिन्ना लिव लागे तिने विचे माया पाया, हर आप मूर्ख मूल ना पाया जाए, मूल ना पा जाए किसै बिटो रहे लोक मिल लाए।

गुफा अंदर रख कर वाजा पौन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रख।

प्रकार संत्रे रक्षा कर सतगुरु जियो संता जी सेवा दृढ़ प्रमाण कनिया कदम कर्म रेखे राम के पास यु संता उदम बचो अपने चरणा कमला दी प्रीति बचो नाम दी दात बचो सिमरन दी दात बचो ते पास जियो घर दे विच खुशियां खेड़े बख्श कने सतगुरु जियो कृपा कणित के पातशाह जियो हर प्रकार हंत्रे रक्षा कर सतगुरु जियो ऐसुले आप जी दे हजूर समूह संता वालो कड़ा प्रसादी देग हाजरी आप अपने दर ते प्रवान करो प्रवान होया प्रसाद चार संगत वरते जो जी चके सो आप जी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ते पातशाह जियो पवित्र हुक्म नावे दी दात बचे उपरम त्री आशा जुहार दे कीर्तन की अरमता बटो सही प्यारे मेल जी नाम लिया चिदान नाम चिति आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे तरपता।

सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या ठिका क्या तग महला पहला।

वस्त्र ना पहरे अनेस कह रहे मोहन विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पगो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंध है पत गवाई मण नाम है किस थाए ना पाई रहे बेबाणी मणि मसाणी अंधना जाने फिर पस्तानी

चार मूर्ख पंडित हिकमत हुज संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे, मंगे मोग दुआ जति सदावे जुग न जाने, छड़ भय कर।

दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न हो। तू करता करण में नहीं जाओ करी न हो, भले हरि कुद तपस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात मह जो जोत मह जाता कल कला पर पूर रहा, तू सच्चा साहब सिर्फ सवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहा महला।

संध्याबादंग सिलपूजस भगत समादंग मुख झूठ के रूपण सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गल माला तिलक ललाटंग दोए धोती वस्त्र का पाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट नहीं चो कर्मं।

पाए भगत गुरपुरब प्यारा गुर अर्जुन सच सिरजन हारा हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हार बख्शला मेरे स्वामी।

तुमते हो ईसु आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम्ही, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमरक। गुर नानक नहीं त्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याय, जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नदया वे ताए। सब ठाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सह महाराज जी। सब ठाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया। वंड के छकिया दिग चलाई तेग वाही दे के अण डिटकीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी से बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे ते सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े आरियां ना चराए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया। सिखी केसा स्वस्थ सिंह निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी से बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चतावे चतावन का सदका सर्व सुखोय जह जह खालसा जी। साहिब तहत हर शरियात देखते फते। बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे मुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत का रखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। इन माणियों के माण, नितानियों के तान, न्यूटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। दोए कर जोड़ करूं अरदास, तुद भावे ता आणे रास। महाराज जी आप जी दे चरणां अरदास बेनती। आप जी की महान बख्शिश हुई। अमृत वेले आप जी ने अपने तख्तां ते प्रकाशमान होके संगत नूं दर्शन दारे बख्श के निहाल कीता। अमृत वेले पावन हजूरी अंदर दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवानां विच संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन होए। उपरंत अज दे हुक्मनामे दीआं विचारां होईआं। छे पौड़ियां आनंद साहिब दे जाप होए। महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचार करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या होइया बेअंत बेअंत फुला बख्श देनिया जी। अगे वास्ते समत बख्शिश करनी, शुद्ध गुरबाणी गायन करने का बल उत्तम बख्शिश करना जी। बाणी का भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसौड़ा, आईया संगतां दी हारी दर्द प्रवान करनी, सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनी है जी। सभना नूं दरो करो नाम दान, गुरसिखी जीवन बख्शिश करना, चढ़दी कला बख्शिश करनी, कृपा करनी महाराज जी। दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी, सुखां दा प्रकाश करना, देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी। बेअंत संगतां दूर दराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन, जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदे आ। बेअंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघा वास्ते उन्होंने भेटा की महाराज जी। सारी संगत की हारी दर प्रवान करनी, सभना की माया सफली करनी, किरत कमाइया बरकता पाया, श्रद्धा भावनावान संपूर्ण करनिया, चढ़ती कला बख्शिश करनी जी। आप जी के दर घर दे सेव काका मनप्रीत सिंह जी महाराज जी,
ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ। ਬਜਟਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਹ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਰਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੇ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ।

आई। आपस कौम निवर कर था पहु का कौ कहो कसाई। मन के अंधे आप न बुझो काहे बुझावो पाई। माया कारण विद्या बेचहो जन्म अबिरथा जाई। नारद बचन व्यास

गुर उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम परयो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप

राज भीखन अधिक करो। नौनित ठाकुर दई सुदा मैं, ध्रुव अटल अजहू न टरो। भगत हेत मारियो हर नाखस, नर सिंह रूप होए देह धरियो। नामा कह

दारू सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जा कह रे चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध नव नित कर तलता कै हर हर हर ना जपस रसना।

ब्यास विचार रहो पर ब्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद उपाद रहत हुए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत।

क्यों दुख अंक सही जै, भवर भवंता फूली डाली क्यों जीवा मरमाए, नानक चेत

हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन ना सुखावे, नानक सा सुहागन कंती फिर कै अंक समावे। भादो भरम भुली भर जो बन पछताणी, जल थल नीर भरे जल थल नीर भरे, बरस रुते रंग माणी, बरसै निसका।

बिन हर क्यों सुख पाइए, नानक पूछ चलो गुरे अपने, जह प्रभ तै ही जाइए, असुन आओ पिरा सात।

देख चलत मन डोले, दह दिस साख हरी हरियावल, सहज पक्कै सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे, सतगुर भए बसीठा, कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया, दीपक सहज बलै तत जलाया, दीपक रस तोले धन पिर मोले, दीपक रस तोले धन पिर मेलो, धन उमा है सरसी, दीपक रस तेलो धन पिर मेलो, धन उमा है सरसी, अवगण मारी मरै न सीझै, गुण मारी ता मरसी, नाम भगत दे निज घर बैठे, अजहो तिनाड़ी आसा, नानक मिलहो कपट दर खोलो, एक घड़ी खट मासा, मंगर माहो भला, हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवै, मैं फिर निहचल भावे, निहचल चतुर सुजान विधाता, चंचल जगत सुबाया, ज्ञान ध्यान।

वण तृण रस सुख है, आवत की नाही मन तन वसहे मुखे, मन तन रव रहे आ जग जीवन गुर शब्दी रंग माणी, अंडज जेरज सेतज उत्पुज घट घट जोत समाणी, दर्शन देहु दया पत दाते गत पावो मत देहु, नानक रंग रवै

नानक सुर नर शब्द मिलाए तिन प्रब कारण किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु कृपा गुरु बख्शिश का सदका नेता प्रति गुरु चरणा विच बैठ के घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़ते हो। सतगुरु जी ने अज भी तरस किया है, सतगुरु जी कृपा करन पढ़ी सुनी बाणी का भाव समूह संगत नूं प्रदान करन। बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गई हैं, आप संगत कृपालु सतगुरु जी बख्शे योग ने जी, भुल्लां ना चितारनियां, प्यार सतफते के जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

कृता निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवड हत्या कमाए शांत पापी पाप अशांत कूड़े आश्रय फिराए शांत मरे माल पाखाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे क्या वारे न जामा के जो तुम पावे सही परिकार।

पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई।

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए शांत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे फिराए अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे मारे न जाना एक जो तुम पावे सही कलिका।

निष्कपट निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख काल वड़ कमाए अशंख पापी पाप अशंख मूर यार मरे सुधाए अशंख मलेच माल पाक खाए अशंख निंदक

पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाए संख पापी पाप असंख कूड़े आर असंख मलेच मर पाए असंख निंद

अंतर करती जग मरना सब गुण तेरे बनाई होए बिन गुण की के बंधन होए बस आसाई ब्रह्मा सत सुहान सलाम कमन सुवेगा भगत कमन कमन से कमन कमन सृष्टि महा कमन वेल न पाइया पंडित दी।

बहुत जन्मना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाके हृदय वस्या हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त।

सतगुर के पाए भ्रम पो जाए पैराचे सच रंग समाए रहाओ। गुर मिले हर मन वसै सुपाए मेरा प्रभ पारा कीमत नहीं पाए। शब्द साला है अंत न पारा वार मेरा प्रभ बक्से बक्सन हार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसै।

ठाकर हाय। नाम नव नित गुरते पाए, हर कृपा ते हर वसै मन आए। राम राम राम करत्या सुख।

यह सतगुर सहजे हर गुण गाई, जह सतगुर सह सतसंगत बनाई, जह सतगुर सहजे हर गुण गाई, जह सतगुर तहां होमे शब्द जलाई, गुरमुख सेवा महली थाओ पाए, गुरमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरमुख भगत

हर शरणागत राख ले हो मूड मुग्ध निस्तारे। सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया, सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहला गाया। हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया।

गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की। धर पौजल अकथ कथा मुन हर की, गोबिंद सत संगत में लाए। धर पौजल अकथ

सो जन हमरे मन चित पावे। जन पग रेण वडभागी पावे, संत जना स्यो प्रीत बन आई। जिन को लिखत लिखिया तुर पाई,

सफल है बणी, जल जित मिल हर नाम ते आया हर तणी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख

0: पहाड़ कले संजोर जी क्या गंगा के नाम सब नाल क्या मुड़ी सुन एवले काले की जाने कोए
1: गंगा के नाम होए
0: कितना तान सुनाले और रोवे
1: गंगा

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर जाए अशांत मलेच मार पाए अशांत निंद

कृता पुरुष निर्भउ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक उसी।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवड हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे सुधाए अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदक करे पास नानक नीच कहे क्या मारे न जामा दे जो तुझ पावे सही परिकार सदा सलाम संत नाम संत नाम राम नाम संत

याद कहत न संग है प्राणी कौन किस कृपा तार है हृदय शोध ब्रह्म विचार है गौड़ी महला पंजवा तिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे रहाओ दुष्ट दूस पर

रहाओ सुज बिन करी न जीवना तिर ग्रह न संसार जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी।

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सुप्रसन्न पै की सुवा तीजन हर गुण गाहे मात पिता सुध बंद पो तू मेरे प्राण आधारो साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गोड़ी बैरागण रहोए के शंत के कर्म हल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारू गावै सर्व कल्याण सुख सच पावै राव बन बन खोजत फिर से बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी जिन हर पाया सी बट भागी मादक तन गातक चाहे जोगी जति सिद्ध हर आहै जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहै ताकि शरण जिन विसरित नाही पर

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे पर देशन दूर से आई नाहन दर्व न जोबन माती मोहे अनाति करो समाई खोजत खोजत सही बैरागन और दर्शन को हो पित साई दीन दयाल कृपाल प्रब नानक साध संग मेरी जलन बुझाई गौड़ी महला पांजवा पर बिल वेखो प्रीत मन लागी आए लोगो मोहे करो बेनती ओ संत मिले वट भागी राहो मन आपो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे अंतन फिरो तिस पिछे बैरागी पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे पीठ पुरख रसिक बैरागी मिटे अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पांजवा निक सिरे पंखी सिमर हर पांख बिल साधु शरण गहो पूर्ण राम रतन हीरे संग राख रहाओ तमकी कुई त्रिषा रस पंकज अत्री क्षण मोह की फास काटन हार जग गोविंद गुर गोविंद चरण कमलता के करो निवास कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास कर गे लेहो नानक के स्वामी जीव पिंड सब सुमरी रास गौड़ी महला पांजवा अर्पिक को सिमृत मन मेरा आस प्यासी चित वो दिन रैनी है कोई शांत मिलावे नीरा राव सेवा करो दास दासन की अनक पांसित करो निहोरा सोला तार सोले सुख सगले बिन हर दास सुबह ही सोरा संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन को जात बहोरा आनंद सुख पीड़ हर नानक।

किनबित मिले गुसाई मेरे आराम राए, कोई ऐसा संत सह सुखदाता मुझ मार्ग दे बताई। रहाओ अंतर अलक न जाई लगया, पर्दा हो मैं पाई माया मोहे सब जग सोया, ये परम कहो क्यों जाई। एका संगत एक गृह वस्ते मिल बात न करते पाई, एक बस बिन पंच दोहेले ओ बस अगोचर ठाई। इसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई, अनक पाव करे नहीं पावे बिन सतगुरु शरणाई। जिनके बंधन काटे सतगुरु तिन साध संत लिव लाई, पंच जना मिल पंगल गाया हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिच मिले गुसाई, सहज पया।

सहसा सासंग दरसारी चरण पुखार करो गुरु सेवा बार जाओ लख बरिया जे प्रसाद से पौजिल तरिया जन नानक प्रया संग मिरिया गौड़ी महला पांजवा सुज बिन कवन रिजावे तो ही तेरो रूप सगल देख मोही राव स्वर्ग पयाल मृत्यु भूमि मंडल सर्स मानो एक ओही शिव शिव करत सगल कर जो रहे सर माया ठाकुर तेरी दोही पसद पावन ठाकुर नाम सुमरा सुखदासी सुखदाई निर्मल शीत लोही ज्ञान ध्यान नानक बढ़े आई सात तेरे सो गाल गलोही गौड़ी महला पांजवा मिलो प्यारे जिया तब किया तुम्हारा सिया राव अनक जन्म बहुत जोनी भ्रमया बोर बोर दुख पाया सुनी कृपा से मानुक देह पाई है देहो दर्द हर राया

सुनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निध दयाला राख लियो पिता प्रभु मेरे अनाथे कर प्रतपाला जिसनु तुम्हें दिखाए वो दर्शन साध संग के पाछ है कर कृपा सूर देव संतन की सुख नान के हो वाच गौड़ी महला पंजवा और ताके बलिहारी जाके केवल नाम मुदारी रहो महमा ताकी केतक गनिया जन पार्वम रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उनसो तरिया उन संसर अवर नजदाते उनकी संग सन परे संसर अवर नजदाते जग उदाहरण सोई आए जो जन दर्स प्यासा उनकी सन परे सो तरिया संसंग पूर्ण यासा ताके चरण परोसा जीवा जन के संग निहाला पासन की रेण होए मन मेरा ओह प्रभु कृपाला राज जोवन अब जो दीस है सब किचे जोग में काटिया नाम दान सद नवतर निर्मल इव नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पांजवा जुगत जोग जुगत सुनो जोग जुगत सुन आयो गुर से मोको सतगुरु शब्द बुझायो राव नौकट पृथ्वी इस तन में रविया निमक निमक नमस्कारा देखा गुरु की मुद्रा कानी दृढ़ एक निरंकारा पांच चेले मिल के पह अकतर अकतरा इसके बस किए दास बरागण या गया कारी तब निर्मल जोगी सिए परम जराए चिराई भी पूसा पांच एक कर पेखिया सहज सुख सो किनी पुसा जो ठाकर मस्तक लेखिया जय पवना ही तहा आसन बाध्यो सिंगी अनहत बानी तद विचार डंडा कर राखियो जोग सना मन पानी ऐसा जोगी बड़पागी पीट माया के बंधन काट सेवा पूज करो सिस मूर्ति की नानक सिस पग चाट गोड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याई ले मीता हर औखद चा को गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिटो से तन से गुरु शब्द दीपक प्रगासा क्रम की जाली ताकी काटी जागो सात संग विश्वासा तारी ले पावजल तारू बिखड़ा बोध साधु संगा पूर्ण होए मन की आशा गुर पेट्यो हर रंगा नाम खजाना भक्ति पाया मन तन सिर्फ अगाए नानक हर जीव सा कहो देव है जाको हुक्म मनाए गौड़ी महला पांजवा दया मया कर प्राण बत मोरे मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी अंध को मैं हाथ दे राखो कछु श्यान उपस न मोरी रहो कर्ण कराब सुम ही तुम समर्थ नाही अनहोरी तुमरी गात तुम ही जानी से साव से सेवक जिन भाग मसोरी अपने सेवक संग सुम प्रभ राते ओस बोध भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे कैसे दृष्ट ओहो चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जाके ही ये प्रगट सतब हुआ अंदन कीर्तन रसन रमोरी रमोरी तुम सम्राट अपार अत पूछे सुख दादे प्राण अधोरी नानक प्रभु की जे कृपा संतन के संग संगोरी गौड़ी महला पांजवा तुम्हार से तेरा ते संत हो निवाहे लियो मोको पुरख बदाते और पचापो दाते रहो तुम्हारा मन समाही जाने तुम पूर्ण पुरख बदाते राखो शरण अनाथ दीन को करो हमारी गाते चरण सागर भोस चरण सुमारे तुम जानो अपनी पाते कर कृपा जिस राखो संगे
इति पार पराती सीत उस सुम सुमरता सब सुमरे हासे ऐसा न ध्यान देहो मोको अर्जन चले हमारे साथी निर्गुण आर्य को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नान घर पेटे मन तन शीतल सरापे गौड़ी।

एक नाम को शिव पुजारी मुख आचार्य गुरु दिखायो कयो प्रगाद सर्व जियारा गुरु ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अन पै ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुख ठाओ गवायो जो सुप्रसन्न पै प्रभु ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किच आवत ना किच जावत सब खेल क्यों हर रायो कौ नानक अगम अगम है ठाकुर पग टेक हर नायो गौड़ी महला पांजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन साखी ओडग ही जा रे जिन सारे ब्रह्मांड खांड हर साको नामच पी जा रे राव मन की मत त्यागो हर जन हुकुम भू सुख पाइय रे जो प्रभु करे सोई फल मानो सुख दुख ओ सियाई रे ओढ़ पसद उधारे।

सबको मात का प्रतिपालक जीव प्राण सुख सागर रे देंदे टूट नहीं तिस करते पूर ताकि शरण आई पूर रह।

तेरा स्वामी काट कट आंसर सोई रे नानक दास साखी शरणाई जाते बेसाना कोई रे। वाहेगुरु सतनाम।

तू सरगुनी या हुआ तुम रखे गुर कृपा ते कोलके अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तू ही तान गौड़ी महला पंजमा हरि हर हर अराध्य सत संगत हर मन वसे परम भो सादिये रहो वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच विराजित जन सुने सगला स्थान भय पीत चीन राम सेवक भय रहत कीन लख चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध सियान पहोमे रही हर साध सरण नानक गही गौड़ी महला पंजमा मन राम नाम गुण गाइये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याये रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जापिये सो जन दुख न व्यापिये जा को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अगनते नानको प्रभ मया कर मेरे मन तन वासे नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम इहा सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम रहो कटिए तेरा अहंग रोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जिन जन चाकिया ताकि तृष्णा लातिया हर विश्राम निद पाया सो बहु न कथी ताया हर हर नाम जाको गुर दिया नानक ताका पहो गया राग गौड़ी।

सुंदर नारी अनक प्रकारी पराग्रह पेकारी बुरा पला नहीं सुजी है अनक बंधन माया परमत प्रमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखे ही महलुजी है जाकूरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जानदार हर सिजी है।

ही गाओ तू ही सुन है नानक नेर नेरी गौड़ी महला पंजमा मातो हर रंग मातो राओ उही पियो उही कियो गुरु हे दाइयो दान कियो वाहु सो मन रातो उही पाटी उही पोचा उही प्यारो उही रुचा मन ओहो सुख जातो सहज खेल आनंद खेल रहे फेर भय मेल नान गुर शब्द प्रातो रा गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम लेहो मीता लेहो आगे विखम पंथ पै आन रहो सेवत सेवत।

करता अपने कर्तव आपे जाने जिन एहो रच नरचाया ओ नानक करण हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन आवर क्रिया बिरते जप तप सं

आवे पार, मन माने हर एकंकार, मन भूलो माया कर जाए, काम ब्रुदो रहे न टाए।

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म पवे कच्छ पाई उथे पाए नानक कर्म खंड का।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैवम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवड अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आ गए अशांत मलेश माल पाए अशांत

अंतर्गत तीरथ मरना सब गुरु तेरे सुनाई होए बिन गुरु की कृपा न होए स्वस्थ आस पाणी ब्रह्मा सत सुहाग ब्रह्म कमल सुरेंद्र भगत कमल कमल सिद्ध कमल कमल सृष्टि मां कमल वेल न पाया।

फलानी फला है नदियां से बाहर पांच सोमना जान समुद्र सात गिरी तुलनामणी अंत न सुनी कहना अंत न करना देना अंत न देखना सुना।